लोकगीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है, मैं उसे भूला नहीं। जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने, अगर आप इजाजत दें तो।